रेडियोधारी 100.9 गर्हर्ज के साथ ही इंटरनेट ऑनलाइन को www.redhari.org मार्फत संसार भरक प्रसारण भैर बिहान 6:45 बजे खबर नाम वेक को नमस्कार खबर को शुरू में मुख्य मुख्य खबर धादिंग को थापे गांवपालिका में प्रथम थापे बाल महोत्सव शुरू व्यावहारिक ज्ञान में आकर्षण करने अपेक्षा

0: महालक्ष्मी लाइफ इंश्योरेंस के अभिकर्ता बनो।
1: प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड।
2: समुदाय का लागी समुदाय को आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ज।

0: 아니나이나의 라이프 인슈어런스 쿨의 라디오. शहीद मेमोरियल अस्पताल धारिंग सीमा हरेक महीना को पहिलो शनिवार मानसिक रोग संबंधी स्वास्थ्य परीक्षण
1: यदि तपाई वा परिवार का कुनै सदस्यमा लागू औषध संबंधी दुर्व्यसनी छारे रोग निराश हुने काम में मन नलाग्ने आलस्य हुने निन्द्रा नलाग्ने बिर्सने शरीर झिमझम हुने धेरै डर लाग्ने मुटु ढुकढुक हुने धेरै शंका गर्ने अस्वाभाविक व्यवहार देखाउने आत्मबल कमजोर हुने बच्चाहरूमा सुस्त मनस्थिति आउने समस्याहरू छन् भने हरेक महिनाको पहिलो शनिबार शहीद मेमोरियल अस्पताल धादिङ सीमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुहोस्।
0: स्वास्थ्य परीक्षण पारिंग स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान का वरिष्ठ मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर नवीन लेखक स्वास्थ्य परीक्षण
1: फेरी शहीद मेमोरियल अस्पताल धादिंग सीमा हरेक महीना को पहले शनिवार मानसिक रोग वरिष्ठ मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर नवीन लेखक स्वास्थ्य परीक्षण
0: थप जानकारी को लगी 010-520-238 और 010-520-263 में संपर्क कर
1: स्वस्थ समाज निर्माण को लागि शहीद मेमोरियल अस्पताल प्राली धादिङ देशी द्वारा जनहित में जारी संदेश।
2: सरकारी शुल्क में निजी अस्पताल में उपचार काठमांडू को वसुंधरा स्थित 100 बेड को मल्टी स्पेशलिटी केडीसी जनरल अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सक र आधुनिक प्रविधि सहज र गुणस्तरीय उपचार अब सरकारी मूल्यमै पाउनुहोस्। 24 घंटा आकस्मिक सेवा, ओपीडी सेवा, शल्यक्रिया सेवा, साथै ल्याब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, इको, इंडोस्कोपी लगायत आधुनिक रेडियोलॉजी सेवाहरुको लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। केडीसी जनरल अस्पताल संपर्क नंबर 01-4985-910 01-4985-911 तपाईको स्वास्थ्य हाम्रो प्राथमिकता।
0: यस शुभला पोलिक्लिनिक काली धादिङ सीमा ग्रान्डी सिटी अस्पताल का वरिष्ठ जनरल फिजिशियन डाक्टर अर्जुन महर्जन द्वारा प्रत्येक हप्ता को शनिवार स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार गराइने हुँदा हुने समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला।
1: लामो समय देखिको दम, पिनास, निमोनिया, COVID-19 पछिको श्वासप्रश्वास सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
0: थायराइड रोग,
1: लामो समय देखिको ग्यास्ट्रिक, खाना अपच हुने, अमिलो पानी आउने,
0: जन्डिस बिग्रिएको, पेटमा पानी जम्ने भए पेट फुल्ने समस्या
1: र जुनसुकै उमेर समूहको सम्पूर्ण शरीरको जाँच, होल बडी चेक पनि गरिन्छ। सम्पर्क ठेगाना
0: शुभला पोलिक्लिनिक ताली नीलकण्ठ टिम धादिङ पुसार बजार प्रहरी बीट अगाडि, फोन नम्बर 010-521-153, मोबाइल नम्बर 98-512-21-153 र 98-43-78-43-22।
3: समुदायका लागि समुदायको आवाज रेडियो धादिङ 106 मेगाहर्ज।

105.4 का साथ ही इंटरनेट ऑनलाइन को www.rwdhading.org मार्फत संसार भर के साथ प्रसारण भइरहेको बिहान 9 बजे को खबर में मैं वेक को नमस्कार। खबर को शुरू में मुख्य मुख्य खबर भारतीय संसद में कार्यक्रम के संस्थापक दालमोहन सरसरी व्यवहारिक ज्ञान में आकर्षण करने अपेक्षा

0: हजार तमाम दृश्य देखिए सुनो नवस्था का यह पसल को रेडियो धाबुन विज्ञापन बढ़ी रहो
1: हमें गए रेडियो धाबुन में विज्ञापन दिए आई रह
2: हजुर तपाई पनि आफ्नो व्यापार व्यवसाय बढाउन चाहनुहुन्छ भने अहिलेै रेडियो भादिङमा विज्ञापन दिइहाल्नुहोस्। यसले तपाईको व्यापार मात्र होइन तपाईको परिचय पनि दिनेछ।

0: को हूँ और वो माँ लक्ष्मी लाइफ इंश्योरेंस की अभिकर्ता बनो
1: तुम माँ लक्ष्मी लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड।
2: समुदाय का लागी समुदाय का आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ज।

0: 始まりないライフインシャレンス風鈴ラジオ。शहीद मेमोरियल अस्पताल धारिंग रेसिमा हरेक महीना को पहिलो शनिवार मानसिक रोग संबंधी स्वास्थ्य परीक्षण।
1: यदि तपाई वा परिवार का कुनै सदस्यमा लागू औषध संबंधी दुर्व्यसनी शारीरिक निराश हुने काम में मन नलाग्ने आलस्य हुने निन्द्रा नलाग्ने बिर्सने शरीर झिमझम हुने धेरै डर लाग्ने मुटु ढुकढुक हुने धेरै शंका गर्ने अस्वाभाविक व्यवहार देखाउने आत्मबल कमजोर हुने बच्चाहरूमा सुस्त मनस्थिति आउने समस्याहरू छन् भने हरेक महिना को पहिलो शनिवार शहीद मेमोरियल अस्पताल धादिङ सीमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुहोस्।
0: स्वास्थ्य परीक्षण पारण स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान का वरिष्ठ मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर नवीन लेखक स्वास्थ्य परीक्षण गई।
1: फेरी सुन्न शहीद मेमोरियल अस्पताल धादिंग सीमा हरेक महीना को पहले शनिवार मानसिक रोग वरिष्ठ मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर नवीन लेखक स्वास्थ्य परीक्षण कर।
0: थप जानकारी को लगी 010-520-238 और 010-520-263
1: स्वस्थ समाज निर्माण को लागि शहीद मेमोरियल अस्पताल काली धादिंग देशी द्वारा जनहित में जारी संदेश।
2: सरकारी शुल्क में निजी अस्पताल में उपचार काठमांडू को वसुंधरा स्थित 100 बेड को मल्टी स्पेशलिटी केडीसी जनरल अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सक र आधुनिक प्रविधि सहज र गुणस्तरीय उपचार अब सरकारी मूल्यमै पाउनुहोस्। 24 घंटा आकस्मिक सेवा ओपीडी सेवा शल्यक्रिया सेवा साथै ल्याब एक्सरे अल्ट्रासाउंड इको इंडोस्कोपी लगायत आधुनिक रेडियोलॉजी सेवाहरू को लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। केडीसी जनरल अस्पताल संपर्क नंबर 01-4985-910 01-4985-911। तपाईको स्वास्थ्य हाम्रो प्राथमिकता।
0: यस शुभला पोलिक्लिनिक ताली धादिङ सीमा ग्रान्डी सिटी अस्पताल का वरिष्ठ जनरल फिजिशियन डाक्टर अर्जुन महर्जन द्वारा प्रत्येक हप्ता को शनिवार स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार गराइने हुँदा निम्न समस्याहरु भएका बिरामीहरुले सम्पर्क गर्नुहोला।
1: लामो समय देखिको दम पिनास निमोनिया कोभिड 19 पछिको श्वासप्रश्वास सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या
0: थाइराइड रोग
1: लामो समय देखिको ग्यास्ट्रिक खाना अपच हुने अमिलो पानी आउने
0: जन्डिस बिग्रिएको पेटमा पानी जम्ने भए पेट फुल्ने समस्या
1: र जुनसुकै उमेर समूहको सम्पूर्ण शरीरको जाँच होल बडी चेक पनि गरिन्छ। सम्पर्क ठेगाना
0: सुबला पोलिक्लिनिक ताली निकट टिम धादिङ सी पुसार बजार प्रहरी बीट अगाडि फोन नम्बर 010-521-153 मोबाइल नम्बर 98-512-21-153 र 98-43-78-43-22।
3: समुदाय का लागि समुदाय को आवाज रेडियो धादिङ 106 मेगाहर्ज।

0: एक्सट्रीम इमेजिंग टाइम टेक अहिले ठीक 2 बजेको छ.
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक, टेस्ट द डिफरेंस, फील द एनर्जी.
2: रेडियो धारी समय संकेत
3: अहिले दिउँसोको 2 बज्यो.

0: कुन इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 4 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
2: रेडियो धारी समय संकेत
3: अहिले अपराह्नको 4 बज्यो
4: शिवम सिमेंट क्वालिटी को मामला में नो कम्प्रोमाइज भन्दै सिर ठाडो पारिरहेका छौं सदा सर्वदा

0: ट्रिंग एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
2: रेडियो धारी समय संकेत
3: अहिले साँझको 5 बज्यो

रेडियो एक सौ समय घोष का साथ ही इंटरनेट अनलाइन को www.redhaving.org मार्फत संसार भर के साथ प्रसारण भइरहेको साँझ 47 बजे को खबर में वेगको नमस्कार। खबर को शुरू में मुख्य खबर। बागमती प्रदेश स्तरीय न्यायिक सम्मेलन सम्पन्न।

रेडियो समय बहस का साथ ही इंटरनेट अनलाइन को www.radiodharlingdotwarj मार्फत संसार भर के साथ प्रसारण भइरहेको बेलुका 38 बजे को खबर में मेकको नमस्कार। खबर को शुरू में मुख्य खबर। रेडियो धारिंग बागमती प्रदेश स्तरीय न्यायिक सम्मेलन सम्पन्न।

0: पाइनु का साथ ही पुरानो मोबाइल दिएर नया मोबाइल पनि साटिन्छ।
1: त्रिमूर्ति मोबाइल हाउस धादिङदेशी मिलनटोल लेकाली टिकट काउन्टर सँगै प्रोप्राइटर ईश्वर श्रेष्ठ। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9841063130 र 9813180307।

0: राष्ट्र बैंक बाट इजाजत प्राप्त 9 वर्षको वित्तीय संस्था
1: रिलायंस फाइनेंस लिमिटेड वित्तीय सेवा को अर्को परिभाषा
2: शहीद मेमोरियल अस्पताल धारिंग सीमा हरेक महीना को पहिलो शनिवार मानसिक रोग संबंधी स्वास्थ्य परीक्षण
3: यदि तपाई वा परिवारका कुनै सदस्यमा लागू औषध सम्बन्धी दुर्व्यसनी छारी रोग निराश हुने काममा मन नलाग्ने आलस्य हुने निन्द्रा नलाग्ने बिर्सने शरीर झुमझम हुने धेरै डर लाग्ने मुटु ढुकढुक हुने धेरै शंका गर्ने अस्वाभाविक व्यवहार देखाउने आत्मबल कमजोर हुने बच्चाहरूमा सुस्त मनस्थिति आउने समस्याहरू छन् भने हरेक महिनाको पहिलो शनिबार शहीद मेमोरियल अस्पताल धादिङ सीमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुहोस्।
2: स्वास्थ्य परीक्षण पारण स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान का वरिष्ठ मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर नवीन लेखक स्वास्थ्य परीक्षण गई
3: फेरी सुन्नुहोस् है त शहीद मेमोरियल अस्पताल धादिङ सीमा हरेक महीना को पहिलो शनिवार मानसिक रोग वरिष्ठ मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर नवीन लेखक स्वास्थ्य परीक्षण गई
2: थप जानकारी को लगी 010-520-238 और 010-520-263 में संपर्क कर
3: स्वस्थ समाज निर्माण को लागि शहीद मेमोरियल अस्पताल प्रणाली धादिङ द्वारा जनहित में जारी संदेश